शोभा जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना समूह स्वर में सुनते हैं, जिसके रचयिता हैं गजानन कुलकर्णी, संगीतकार हैं रविंद्र खासनेस।

गजानन कुलकर्णी ने रची यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनेस। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं प्रभाकर कारेकर के स्वर में यह भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

0: ಕುಂದ
1: ಎರಡೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಸರಿ ಗರಿ ಮೂರನೇ ಕಾಲ
0: ಕುಂದ
1: ಹಾಕೊಂಡು

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग अहीर भैरव. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सोहनलाल शर्मा. राग अहीर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित जगदीश प्रसाद.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू ख्याल इन राग अहीर भैरव. Our artist this morning, Pandit Jagdish Prasad, accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. Now, listen to a khayal in Rag Ahir Bhairav. Our artist, Pandit Jagdish Prasad.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोहनलाल शर्मा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं पंडित संदीपन समाजपति का ख्याल गायन राग बैरागी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमय मित्रा। राग बैरागी में ख्याल, कलाकार पंडित संदीपन समाजपति।
1: You are listening to Khayal in Raag Ahir Bhairab. Our artist, Pandit Jagdish Prasad. Accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. This is Raagam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Khayal in Raag Bairagi. Our artist, Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar. And on the harmonium, Hiranmoy Mitra. Now, listen to a khayal in Raag Bairagi by Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरणमोय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिस्निंग टू ख्याल इन राग बैरागी बाय पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम हिरणमोय मित्र। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है वीणा मुरडूर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग विभास सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है ए हो नरहर नारायण, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है छांडो कृष्ण जुगल बैया। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग बिभास। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं वीणा मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है सो ही रसना जोगी, और द्रुत तीनताल में निबद्ध रचना के बोल है वीरज में धूम मचायो श्याम। आपके साथ तबले पर है सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरडू द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्ये। हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मानिक वर्मा का गाया राग बागेश्री.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Vidushi Manik Varma. She first presents Rag Bageshri.

0: अभी आप मानिक वर्मा का गाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए इनकी गाई काफी ठुमरी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग बागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी मानिक वर्मा। शी कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विद अ ठुमरी इन राग काफी।

0: अभी आप मानिक वर्मा की गाई काफी ठुमरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट ठुमरी इन राग काफी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय विदुषी मानिक वर्मा। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोता नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर आज के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन, प्रारंभ में राग बहार।

अभी आपने उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन सुना, राग था बहार। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने शहनाई पर बजाया राग मालकौंस।

अभी अपने उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शहनाई पर बजाया राग मालकम सुना। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की निर्मिति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग यमन पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस. आपके साथ तबले पर हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर हैं सोमनाथ बर्धान. तो लीजिए प्रस्तुत है राग यमन पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani instrumental recital followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a sitar recital in the rag Yaman. Our artist is Swarup Kumar Bose. Accompanying our artist on the tabla is Pinaki Chakraborty and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to the sitar in the rag Yaman. Our artist, Swarup Kumar Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग यमन पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे स्वरूप कुमार बोस। आपके साथ तबले पर थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर थे सोमनाथ बर्धान। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, तदुपरांत जिला दादरा। कलाकार हैं पत्रलेखा दत्ता राय। आपके साथ तबले पर हैं तुषार दत्तो और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, तदुपरांत जिला दादरा। कलाकार हैं पत्रलेखा दत्ता राय।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Yaman. Our artist was Swarup Kumar Bose. Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty and on the harmonium was Somnath Bardhan. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a vocal recital. Listen to Mishra Pilu Thumri followed by Zila Dadra. Our artist is Potrolekha Dotturoy. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Datta and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Mishra Pilu Thumri followed by Zila Dadra. Our artist Potrolekha Dotturoy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, उसके उपरांत जिला दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे पत्रलेखा दत्तौ राय, आपके साथ तबले पर थे तुषार दत्तौ और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to Mishrapilu Thumri, followed by Zila Dadra. Our artist was Patralekha Dattu Roy. Accompanying our artist on the tabla was Tushar Datta, and on the harmonium was Debashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata, Boragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। प्रीतम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के सात चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely travelled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs

0: musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer, and is also working on a meditation project on the seven chakras of our body.
1: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं औषित जाना.
0: Tonight, Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by Oshit Jana.
1: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकौंस के साथ करेंगे. आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है.
0: Ritam Sarkar begins his guitar recital with Rag Malkaus. With Alap, Jor and Jhala, the composition is set to Vilambit Jhaptal, followed by Drut Tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम सरकार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Raag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Raag Kirwani.
2: The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औषित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

आप सुन रहे हैं ख्याल युगल गायन। कलाकार हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल डियो रिसाइटल बाय पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बरनी ना जाए। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल हैं पिया को मनाऊं मानत नाही रे। नाउ द आर्टिस्ट पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र रेंडर राग बिलास खानी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल युगल गायन। कलाकार थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। संगत कलाकार थे तबले पर मुकुंद भाले और हारमोनियम पर मोहन मूंगरे। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। You were listening to Hindustani Khayal Duo Recital by Pandit Rajan Mishra and Pandit Sajan Mishra. The accompaniment was provided by Mukund Bhale on the tabla and Mohan Mungre on the harmonium. This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनोद कुमार द्विवेदी का ध्रुपद गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद. पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा.

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

ओम तना ना ना ना ना रे रे रे दा ना ना दा ना ना दा ना ना रे रे रे दा ना ना ना ना ना रे रे रे दा ना ना रे रे रे रे दा ना रे रे ना।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। विनोद कुमार द्विवेदी अपने कार्यक्रम का समापन राग किरवानी में गाए ध्रुपद से कर रहे हैं। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग किरवानी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित राजकुमार झा। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है।

0: प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सरोद रिसाइटल बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकॉम्पनीमेंट ऑन द तबला इज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। लिसन टू राग बसंत मुखारी इन विच यू विल हियर द आलाप followed by the vilambit and drutgat set to teen taal।

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। Accompaniment on the tabla was provided by Sukhmay Banerjee. This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.